0: करता वो न यूं हमदम, तुम्हें ना गोदा की कसम।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोही कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिसियन, हाड जोड्ने, नसा, प्रसुति।

0: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक। यति बेला दिउँसोको 3 बजेको छ।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: सूर्य को विकिरण बढ़ते आंखा कमजोर होते ग्लोबल वार्मिंग आंखा में रोग अरु थुप्रे समस्या तर समाधान पशुपति आई केयर सेंटर में विज्ञ आंखा का डाक्टर संगे आंखा चेक करने अत्याधुनिक उपकरण पनि छन्। हाम्रो आँखालाई सुरक्षा दिने उच्च क्वालिटी का पावर ग्लास र फ्रेम उपलब्ध छन्। अब ढुक्क हुनुहोस्, पशुपति आई केयर सेंटर ले तपाईको आँखा को रक्षा गर्नेछ। पशुपति आई केयर सेंटर कपासी दान। सम्पर्क नम्बर 9843008804 9843008804 www.pashupatiicare.com।
2: खुशीको खबर।
3: अब हाम्रै दाङको घोराही हस्पिटल रोड स्थित अत्याधुनिक प्रविधि युक्त हेलिकन सिटी स्क्यान सेवा नयाँ व्यवस्थापनका साथ शुरू भइसकेको सबैमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
2: सम्पर्क घोराही सिटी स्क्यान सेन्टर प्राली हस्पिटल रोड घोराही दाङ। सम्पर्क फोन नम्बर 082-590-847 082-590-847।
4: विभिन्न जटिल रोग को उपचार अब सिद्धार्थ पोलिक्लिनिक घोराही दाङ में।
2: यस सिद्धार्थ पोलिक्लिनिक हस्पिटल रोड घोराही दाङ में महिलाहरूका लागि वरिष्ठ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर गोमा रिमाल एमबीबीएस एमएस र पेट छाती मुटु सुगर तथा थाइरोइड रोग सम्बन्धी उपचार वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर वाचस्पति सुवेदी एमबीबीएस एमडी द्वारा दैनिक रूपमा बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले विशेषज्ञ डाक्टर सेवाली आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
4: नोट, हामी कहाँ भिडियो एक्सरे वरिष्ठ डाक्टर किशोर गौतमद्वारा भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
5: सम्पर्क सिद्धार्थ पोलिक्लिनिक हस्पिटल रोड खोराही दाङ। सम्पर्क फोन नम्बर 082-590-829। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97492-64643 र

0: అందం రెడీస్ మీరు ఎవరెస్ట్.
1: UAA प्राप्त बानेश्वर बहुमुखी कैंपस शांतिनगर बानेश्वर काठमांडू को नया भर्ना संबंधी सूचना.
2: लामो शैक्षिक इतिहास भएको त्रिवी द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा में राम्रो रिजल्ट ल्याउन सफल QAA प्राप्त इस कैंपस में बिहानी समय में BBS BA र BEd प्रथम वर्ष में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि भर्ना खुल्यो.
1: साथ ही विद्यालय व्यवस्थापन समिति को स्वीकृति में बिहान समय में कक्षा 11 में साइंस मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज कंप्यूटर साइंस र एजुकेशन में धमाधम भर्ना भइरहेको छ.
2: कैंपस लोकेशन काठमांडू को तीनकुने गैरी गांव पेट्रोल पंप बाट 200 मीटर भित्र बागमती पुल सँगै.
1: सम्पर्क बानेश्वर बहुमुखी कैंपस शांतिनगर काठमांडू.
3: सम्पर्क फोन नंबर 01-46-20-310.
2: मोबाइल नंबर 98514-0141-98 र 98412-55957.
4: कोसेली बेकरी र बीएन फूड ट्रकको फेसबुक पेज फलो लाइक शेयर गर्नुहोस्. 50 कार्टुन पुरस्कार जित्नुहोस्. लौ गोजीबाट मोबाइल झिकिहाल्नुहोस् त अनि कोसेली बेकरी र बीएन फूडको पेज फलो गर्नुहोस्. पुरस्कार जित्नुहोस् भयो त मजा.
5: सञ्चालक नरेश कुमार श्रेष्ठ.